कह पदमनम तुलान कश्याम ह पदम श्याम अनम नह पदम तलुह नप वा इस तिम्पु न तुरीडोंग पुगुन मलेशिया पिसम्पुरान तनाह मलायु सबाह ओम सरावक पिनोइसो म्यांपाय सुंदुआन पिसम्पुरान तदाउ मलेशिया अकन कनपो सुसुयान तमत वा पिनपो कितो कामपायन कगरासन